त्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहु लोग परगासी देखत दर्श पटिक ब्रह्म भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासें सेवक सिख सदा आत्म

जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो निसबास हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ माने तुम मलियागर

स्वामी जी नु कहो गगनौर दा राजा पीपा आया है, वो दर्शन करने चाहंदा है। सेवादार स्वामी रामानंद जी दे कोल गया, बेनती कीती है, स्वामी जी गगनौर दा राजा पीपा आया, वो दर्शन करने चाहंदा है। स्वामी रामानंद जी राजे दी प्रीख्या लैनी चाहते सन कि इहदे मन विच सच्चा प्यार है कि नहीं। सेवादार नू कहा, राजे नू कहो, ओ राजा असी फकीर, फकीरां दा ते राजे दा मेल की, ओनू कहो दर्शन नहीं हो सकते। सेवादार ने आके किया, राजन स्वामी जी कहंदे ने तू राजा असी फकीर, तेरा ते साडा मेल की, दर्शन नहीं हो सकते। सेवादार कोलों ए गल सुनी पर मन दे विच सच्चा प्यार सी। जिन्ने हाथी घोड़े सन सारे दान कर दिते, सोने दे कड़े ला के ओ भी दान कर दिते, कीमती बस्तर भी दान कर दिते, सादे कपड़े पाले,

सेवादार नूं हुण बेनती करो कि हुण पीपा राजा नहीं रहा, वो एक गरीब है, एक फकीर है, वो दर्शन करने चाहिए।

राजे नु कहो जे उन्हें दर्शन करने ने ते शहर दे बाहर एक खूह है ओदे विच डुब मरे दर्शन हो जाने के।

पीछे पीछे रानी भजी जा रही अज तू अगे भजया ते स्वामी रामानंद समझ गए कि एदा मन

कि पहला कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका नगरी चलिया जावे ते भगत पीपा जिड़ा हुन राजा नहीं रहा ओ द्वारका नगरी नु तुर पिया। ओ भगत पीपा जी सानू उपदेश करदे ने भाई ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई मैं तुहानू राम की दुहाई देना ओदा नाम जपो क्यों भटकदे हो ना माया ने नाल जाना ना तुहाडे शरीर ने तुहाडी नाल जाना एक राम का नाम है जिन्हें तुहाडी सहायता करनी है भाई मैं तुहानू वार वार दुहाई देना राम।

द्वारका नगरी जा पहुंचे पर पता नहीं कि मैं द्वारका नगरी विच ही बैठा हूं। यह हुई कृष्ण भगवान की नगरी।

जिथे कृष्ण भगवान रहिंदे ने। ओ कहन लगा अजीब आदमी द्वारका नगरी विच बैठा है ते पुछदा है द्वारका नगरी किथे। ओ खिज के कहंदा है ऐ पानी दे विच द्वारका नगरी है ते इत्थे भगवान रहिंदे। भगत बीबे ने सुनदे सार पानी विच छाल मार दित्ती, पिछे पिछे राणी ने छाल मार दित्ती, पर भगवान ओ तां हर जगह मौजूद है ते पानी दे थल्ले भगत तो पहला भगवान जा बैठे ने। तला ते लोग कठे हो गए ने कि आदमी ते औरत पानी विच डुब गए, पर पानी दे थल्ले भी भगवान है, हर जगह ओ रहिंदा है। ते कृष्ण भगवान पानी दे थल्ले भगत बीबे नू लैण वास्ते आए, अपने कोल बिठाया, भगवान दे प्रतख दर्शन कीते। भगवान ने खुश होके

इंसान परमेश्वर की बंदगी करते हैं, वो हमेशा वास्ते अमर हो जाता है। जिस तरह भगत पीपा जी होए ते गुरु अर्जन साहब ने भगत पीपा जी का यह शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज किया। जिथे असी गुरुआं नूं मत्था टेकने आ, भगत पीपे नूं भी।

कालजुग में कीर्तन पर्दा न गुरुमुख जपिए लाहित्या न परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी गुरु नानक देव जी तो लेके 19वीं सदी तक गुरुवाणी का कीर्तन तंती साज जिवे के रबाब सरंदा ताउस सरंगी आदि राही हुंदा सी। 20वीं सदी दे आरंभ होने ते गुरुवाणी का कीर्तन पच्छम दे साज हारमोनियम ते होना शुरू हो गया, जिस करके तंती साज अलोप हो गए। तंती साजा राही गुरुवाणी दे कीर्तन दी जो इलाही धुन निकलदी है ओ हारमोनियम ते नहीं निकल सकती, जिस करके सिख जगत ने अकाल अकैडमी बड़ू साहब दे बच्चियां नू कहा कि तुसी कीर्तन विच मुड़ सत्कार योग पुरातन तंती साज सुरजीत करो। सात संगत जी, संत अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वाले दी लाई हुई फुलवाड़ी अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहब दे बच्चियां लई अरदास करो कि आप दे ए निमाने बच्चे गुरु साहब दे बख्शिश कीते पुरातन तंती साज रबाब सरंदा हाउस सरंगी ते कीर्तन करके गुरु साहब दी बख्शिश लैन। हुण जिस शब्द दा गायन असी करन जा रहे हां ए पावन शब्द तन गुरु नानक देव जी महाराज दा राग बसंत हिंडोल विच उच्चारण कीता है। बसंत हिंडोल महला पहला। राजा बालक नगरी काची दुष्टा नाल प्यारो दोए माई दोए बापा पड़िए पंडित करो बिचारो स्वामी पंडता तुम देहो मती किन विद पावो प्राण पति रहाओ पितर अगन वनस्पत मौली सागर पंडे पाया चंद सूरज दोए घर ही पितर ऐसा ज्ञान ना पाया राम रवंता जानिए एक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा तन संग्रह कहे आ सुनहे ना खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा।

करे आज मिला से एक फरीदा तातम कुंजड़िया आज मिला से एक फरीदा तातम कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए झूठी।

सीधा गिंद नवाणी कटिए हड्डा को कड़काए खिंतुर मीठा अगलिया जिंद

चले चल हार बिचारा ले मनो, चले चल हार बिचारा ले मनो। गंडेंदिया छे मार तोड़ेंदिया चिट्ठी नो जिमें।

पिता पाई सुत बंता कहां को है कांका। जब लग जोत कर में बरते अपाप सुन बूझे लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सोझे। कह कबीर सुमरे प्राणी कह कबीर सुमरे प्राणी

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दिए मंगल वाले बहुतात विच हन, जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगां, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है। कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहिब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

मंगी जाए। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा है ना, दिन विंदा है ना रात विंदा है, वो पुकारा करी जांदा है। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना है? कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे? बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया? वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

सुखी वस सकेंगी। जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है, जदो तेरा साथी जीव आत्मा उठ के चल पवेगा, तदो ही काया तू मिट्टी विच रुल जावेंगी, जो सह प्रमाण कर रहे हैं।

जितना चिर तू पेके घर विच भाव इस संसार विच जितना चिर तू पेके घर विच रह के उस खसम प्रभु दा सिमरन करेंगी तद ही सौरे घर विच परलोक विच जाके तू सुखी वसेंगी। जो साहेब अपनी बाणी द्वारा

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेंत संगतां ने दर्शन कीते बख्शां हासिल कीतियां ता इन्हां दोनां नूं पता लगा सोना ते मोहना के साहिब कलगीधर पातशाह इत्थे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असीं वी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे के चल के साहिबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहिबां दे दीदार करन आए पर साहिब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त साहिब वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहिब लंघन गए ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतों ने रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्ना विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर

मेरी चोली किसे ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी। ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भरती जांदा है। सत सगत बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेज नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलों का हाल जानता है।